0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठे विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन सिटी दुनिया भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके कई कारण हैं। इसका एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। यह कातिकलिसिया का भी गढ़ है, जहां से संत पिता पूरी दुनिया के ख्रिस्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पोप के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं। उन्हें विभागों में से एक है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधाम पीठ विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।

विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग का मिशन है पोप एवं धर्मदक्षों की मदद करना, दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने में विश्वास एवं नैतिकता पर कार्तिक सिद्धांत की निष्ठा को बढ़ावा देना और विश्वास के भरोसे पर उसकी रक्षा करना। आज विश्वास के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वास की समझ को बढ़ाना, ताकि ना सिर्फ गलतियों से बचा जा सके बल्कि कुछ ऐसे फैसलों से भी बचा जा सके जो आत्मा को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से सही होने के बावजूद वे विश्वास की समृद्धि को दुर्बल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस विभाग के मिशन को प्रकट करते हैं। विभाग में 3 सचिव हैं, महाधर्मदश आर्मांडो मत्तेओ, महाधर्मदश जॉन जोसेफ कैनेडी और महाधर्मदश चार्ल्स जूड सिक्लोना। कलीसिया के चरवाहों की जिम्मेदारी है कि वे यीशु ख्रिस्त द्वारा उन्हें सौंपी गई विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखें। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे इतिहास में पोप ने कलीसिया के शासन को आसान बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और कई विभाग बनाए हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ की शुरुआत इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत 1542 में हुई थी, जब संत पापा पॉल तृतीय ने विश्वास के मामलों की देखरेख के लिए 6 कार्डिनलों का एक कमीशन बनाया था। इसे पौत्र रोमन एवं सार्वभौमिक धर्म अधिकरण के नाम से जाना जाता है। शुरू में यह खासकर ख्रिस्त धर्म विरोधियों एवं मतभेदों के लिए एक अदालत के रूप में काम करता था। 1555 से पोप पॉल चौथे ने इसका दायरा काफी बढ़ाया और इसे अलग अलग तरह के नैतिक मुद्दों पर फैसला करने का अधिकार दिया। समय के साथ विभाग के इतिहास में भी बड़े बदलाव हुए। अब न्यायिक जांच का समय नहीं रहा, निर्देशिका अब मौजूद नहीं है। प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ के नाम और आंतरिक ढांचे में बदलाव लाए गए। पोप फ्रांसिस ने इसका नाम विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग कर दिया। इस लंबी अवधि में इसका काम अवश्य बदला है, लेकिन प्रेरितों के सिद्धांत के प्रति निष्ठा की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग में 2 भाग हैं, धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग और अनुशासनात्मक विभाग। धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग विश्वास एवं नैतिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बचाने से जुड़े मामलों को देखता है। विवाह कार्यालय, जो कानून और असलियत दोनों तरह से विश्वास के खास अधिकार से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है, इसी विभाग का हिस्सा है। अनुशासनात्मक विभाग उन मामलों से निपटता है जो विभाग के लिए आरक्षित हैं और सुप्रीम प्रेरितिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के जरिए विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। विभाग के अंदर ही परमधम पीठ बाइबल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्र कमीशन बनाए गए हैं। हर एक अपने नियमों के हिसाब से काम करता है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अंदर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आयोग का निर्माण किया गया है। इसका काम पोप को सलाह एवं परामर्श देना है, साथ ही नाबालिगों एवं कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सही पहल का सुझाव भी देना है। यह आयोग खासकर दिशा निर्देश के जरिए सही रणनीतियां एवं तरीके बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नाबालिगों एवं कमजोर लोगों को यौन शोषण से बचाया जा सके और पुरोहितों तथा धर्म संघियों के संस्थानों एवं प्रेरितिक जीवन की सोसाइटी के सदस्यों के ऐसे व्यवहार का सही जवाब दिया जा सके। विश्वास को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने की सेवा हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जब कलीसिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। आज की कोशिशें उन कोशिशों में शामिल हो जाती हैं जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत को देखा है, जिससे सही धर्म सिद्धांत के लिए चिंता कहा जाता था, जो संत ऑफिसियो से पहले की बात है, जब विभाग का मुख्यालय है यह पहले से ही नए व्यवस्थान में मौजूद थी। कई काउंसिल एवं सिनेट इसके गवाह हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग विश्वास के खजाने की रक्षा करने की परंपरा को अपनाते हुए अपने मिशन को जारी रखी है एवं आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग की संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका टाइम पास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल पाना कठिन हो जाता है। विशेषकर नौकरी कर रही महिलाएं अपने लिए समय निकाल नहीं पाती हैं, जिससे कि अपना मन पसंद काम कर सके। पर गृहिणी महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर चूल्हा चौका से फुर्सत पाकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल लेती हैं। कुछ महिलाएं टीवी के सामने बैठकर सीरियल वगैरह देखती हैं या मोबाइल देखकर अपना टाइम पास करती हैं। कुछ महिलाएं अपने खाली समय का अधिकतम उपयोग उत्पादक गतिविधियों जैसे पढ़ना लिखना, कोई भाषा सीखना, कोई शौक पूरा करना, व्यायाम करना, कोई खेल खेलना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में करती हैं। पर कुछ अपने मोहल्ले से पार होने वाले फेरी वाले, चाहे वे सब्जी बेचने वाले हों या सलवार सूट साड़ियां बेचने वाले हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम पास करती हैं। पर ये सोच नहीं पाती हैं कि वे इन बेचारों का वक्त जाया कर रही हैं। उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। आशा है आज की नाटिका ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना लाए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका टाइम पास।
1: अरे रीबा, आओ आओ ना यहाँ।
2: और क्या हो रहा है?
1: बस खाना बनाने की तैयारी है, और क्या, तुम्हारा काम हो गया?
2: हाँ, मैं तो सुबह नाश्ते के बाद ही एकदम से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
1: और भाई साहब का लंच?
2: वो तो मैं सुबह सबसे पहले वही तैयार करती हूँ।
1: एक तो ये आग बरसाती गर्मी और ऊपर से गैस के चूल्हे के पास खड़े रहना, बाप रे हालत ही खराब हो जाती है।
2: तो क्या शिखा, तुम पूरे दिन गैस के चूल्हे के पास ही खड़ी रहती हो?
1: नहीं भाई, सारा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ दिन में कुछ घंटे तो वहाँ निकल ही जाते हैं।
2: अब स्त्री होने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, सो वो हम चुका ही रहे हैं, और क्या।
1: और ऐसे में पता है, जब संजीव ऑफिस चले जाते हैं तब काम के बाद टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है।
2: अरे शिखा, तब थोड़ा दिन में आराम ही कर लिया करो।
1: अरे मैं तो बहुत चाहती हूँ कि दिन में सो जाया करूँ, तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लेकिन संजीव दिन में सोने के लिए मना करते हैं।
2: क्यों?
1: उनका कहना है कि दिन में सोने से दो नुकसान होते हैं।
2: अच्छा, कौन कौन से?
1: एक तो यह नुकसान होता है कि फिर रात को नींद ही नहीं आती या फिर देर से आती है, और दूसरा नुकसान यह होता है कि दिन में सोने से मोटापा चढ़ता है।
2: भाई साहब का कहना ठीक है, तो फिर तुम अपना टाइम पास करने के लिए करती क्या हो?
1: ऐसे में टीवी देखने के सिवा और कोई क्या कर सकता है?
2: क्या बात करती हो शिखा, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहने से भी क्या वजन और मोटापा नहीं बढ़ता है?
1: हाँ ये भी एक मुश्किल है, वजन और मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन कोई करे भी तो क्या करे।
2: और फिर आजकल टीवी पर भी क्या सीरियल्स आते हैं, अरे ऐसे जो बनाने वाले हैं और उसमें काम करने वाले भी ना देखे।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने रीमा।
2: और यही रवैया इन्होंने ऐतिहासिक धारावाहिकों के साथ भी कर रखा है।
1: क्या रवैया अपना रखा है?
2: अरे यही मनमानी करने वाला रवैया। अब ये धारावाहिक के निर्माता और निर्देशक ये सोचते हैं कि लोगों ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए तो वे ऐतिहासिक सीरियल्स को भी फिल्मी ढंग से बनाते हैं और दिखाते हैं, इतिहास की धज्जियां उड़ा देते हैं।
1: तुमने सही कहा रीमा, इतिहास में जो न हुआ है उसे भी ये फिल्मा कर दिखा देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि बात कमाई की जो है।
1: लेकिन ये धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक यह भी तो सोचते होंगे कि आजकल कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में जानती क्या है, इसलिए जैसा चाहो वैसा इतिहास दिखा दो।
2: लेकिन जो इतिहास जानते हैं और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते।
1: और रीमा, मजेदार बात तो ये है कि आज की यह कंप्यूटर वाली पीढ़ी ऐतिहासिक धारावाहिकों में भी रुचि नहीं लेती।
2: ये तो सही बात है। अच्छा शिखा, मैं चलती हूँ।
1: अरे बैठो भी रीमा, तुम्हारा घर कौन सा दूर है, दो घर छोड़कर ही तो तुम्हें अपने घर जाना है, और क्या।
2: और क्या क्या क्या मतलब?
1: मतलब ये कि कितना अच्छा टाइम पास हो रहा था तुम्हारे साथ।
2: अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या टाइम पास मूंगफली लगती हूँ? तुम्हें भले ही कोई काम ना हो मगर मुझे तो काम रहते हैं।
1: फिर काम छोड़कर क्यों आती हूँ?
2: थोड़ा सा इंटरवल करने के लिए।
1: तो फिर आप कब आओगी?
2: जब इंटरवल यानी कि मध्यांतर की जरूरत होगी।
1: वाह भाई रीमा, तुम तो मेरी भी गुरु निकली।
2: अच्छा चलती हूँ।
1: आओ रीमा, आज फिर इंटरवल किया क्या तुमने?
2: अरे नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर मेडिकल शॉप तक जा रही थी। जरा
1: क्यों, तबीयत खराब है क्या?
2: अरे नहीं, कोहनी के पास जरा सा दर्द है तो मैंने सोचा कि कोई पेन किलर ऑइंटमेंट ही लगा लिया जाए, सो लेने जा रही हूँ।
1: तुम भी रीमा, सावधानी बरतने में जरा भी देर नहीं करती।
2: वो तो करना ही पड़ता है शिखा। और आज टाइम पास करने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी?
1: टाइम पास की व्यवस्था अभी अभी चली गई।
2: क्या मतलब?
1: सब्जी वाली थी, उसी से टाइम पास कर रही थी। अभी अभी तो गई है बिक्री का रोना रोकर।
2: सच तो है शिखा, अगर सब्जी बेचेगी नहीं तो खाएगी क्या?
1: सब्जी खाएगी और क्या।
3: सलवार सूट और साड़ियाँ दिखाऊं दीदी?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है।
3: आप देख तो लो दीदी।
1: हाँ हाँ दिखाओ भैया।
2: अरे मगर शिखा, तुम क्यों जबरन ही?
1: अरे देखने में क्या बुराई है, क्यों भैया?
3: हाँ दीदी, देखने से ही आपको चीज का पता चलेगा ना।
1: सुना तुमने?
3: अगर जमे तो लेना, वरना हमें तो आगे बढ़ना ही है। हाँ ये देखिए, ये सलवार सूट है और ये साड़ियाँ हैं।
1: ये सलवार सूट खोलकर दिखाना।
3: ये वाला देखिए, बहुत बढ़िया कलर है, फिरोजी, आप पर खूब जमेगा दीदी।
2: कितने का है?
3: वैसे तो मैं 450 का बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 400 में दे दूंगा।
1: हमारे लिए 400 क्यों?
3: अब आप भाव करेंगी, इसके लिए मैंने आपको पहले ही इसकी सही और एक ही भाव बता दिया है। बाजार में यही आपको 500 रुपये से कम में नहीं मिलेगा।
2: तो भैया फिर तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो?
3: अब दुकान वाले अपनी दुकान और नौकर आदि का खर्च जोड़कर बेचते हैं, और हम सिर्फ वाजिब कीमत पर ही बेचते हैं। हमारा भी फायदा और हमारे ग्राहक का भी फायदा। बोलिए दीदी, कौन सा दिखाऊँ, क्या निकाल दूँ?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है, तुम जाओ।
1: अरे मगर देखने तो दो।
3: ठीक है दीदी, आपकी मर्जी।
1: साड़ियाँ तो देख लेने दो रीमा।
2: नहीं भैया, न ये लेगी न मैं, तुम कहीं और बेचो।
3: ठीक है दीदी।
1: तुम भी एक ही हो रीमा। मैं मानती हूँ कि तुम्हें ये पता है कि मैं फेरी वालों से कुछ नहीं खरीदती, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि मैं उसके सूट और साड़ियाँ देखकर अपना टाइम पास कर रही थी और तुमने उसे भगा दिया।
2: मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। तुम क्या समझती हो शिखा, यह फेरी वाला सुबह सुबह अपना सारा सामान लेकर क्या तुम्हारा या तुम जैसों का टाइम पास करने के लिए निकला है, कमाने नहीं? शिखा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय उसकी मजबूरी को समझा करो। अगर तुम उससे कुछ खरीद नहीं सकती हो तो तुम्हें उसका कीमती समय खराब करने का भी हक नहीं है।
1: शायद तुम ठीक कहती हो रीमा।
2: मैं शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। तुम उससे अपना टाइम पास करने की बजाय यह तो सोच लेती कि ऐसा करके तुम उसको अपनी कमाई करने से रोक रही हो। जैसे तुम फालतू हो, क्या सब भी वैसे ही है?
1: अब मुझे अफसोस है रीमा कि मैं दूसरों के समय की कीमत नहीं समझ पा रही थी।
2: देखो शिखा, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी का कीमती समय बर्बाद करें। यदि कोई तुम्हारा समय खराब करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: तो ऐसा ही दूसरों के लिए भी सोचा करो। दूसरों के साथ वह कभी ना किया करो जो तुम दूसरों के द्वारा अपने लिए भी करना पसंद नहीं करती हो।
1: मैं तुमसे वादा करती हूँ रीमा, मैं आज से अभी से अपनी ये स्वार्थी और गंदी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। दूसरों के समय को भी कीमती समझकर उसको महत्व दिया करूंगी।
2: गुड शिखा, तभी तो तुम मानव और मानवता को आदर दे पाओगी।
1: हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो।
0: टाइम पास, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, माइकल होजेस और नलिनी गहलोत। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन सिटी दुनिया भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके कई कारण हैं। इसका एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। यह कातिकलीसिया का भी गढ़ है, जहां से संत पिता पूरी दुनिया के ख्रिस्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पोप के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं। उन्हें विभागों में से एक है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।

विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग का मिशन है पोप एवं धर्मदक्षों की मदद करना, दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने में विश्वास एवं नैतिकता पर कार्तिक सिद्धांत की निष्ठा को बढ़ावा देना और विश्वास के भरोसे पर उसकी रक्षा करना। आज विश्वास के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वास की समझ को बढ़ाना, ताकि ना सिर्फ गलतियों से बचा जा सके बल्कि कुछ ऐसे फैसलों से भी बचा जा सके जो आत्मा को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से सही होने के बावजूद वे विश्वास की समृद्धि को दुर्बल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस विभाग के मिशन को प्रकट करते हैं। विभाग में 3 सचिव हैं, महाधर्मदश आर्मांडो मत्तेओ, महाधर्मदश जॉन जोसेफ कैनेडी और महाधर्मदश चार्ल्स जूड सीक्लोना। कलीसिया के चरवाहों की जिम्मेदारी है कि वे यीशु ख्रिस्त द्वारा उन्हें सौंपी गई विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखें। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे इतिहास में पोप ने कलीसिया के शासन को आसान बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और कई विभाग बनाए हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ की शुरुआत इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत 1542 में हुई थी, जब संत पापा पॉल तृतीय ने विश्वास के मामलों की देखरेख के लिए 6 कार्डिनलों का एक कमीशन बनाया था। इसे पौत्र रोमन एवं सार्वभौमिक धर्म अधिकरण के नाम से जाना जाता है। शुरू में यह खासकर ख्रिस्त धर्म विरोधियों एवं मतभेदों के लिए एक अदालत के रूप में काम करता था। 1555 से पोप पॉल चौथे ने इसका दायरा काफी बढ़ाया और इसे अलग अलग तरह के नैतिक मुद्दों पर फैसला करने का अधिकार दिया। समय के साथ विभाग के इतिहास में भी बड़े बदलाव हुए। अब न्यायिक जांच का समय नहीं रहा, निर्देशिका अब मौजूद नहीं है। प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ के नाम और आंतरिक ढांचे में बदलाव लाए गए। पोप फ्रांसिस ने इसका नाम विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग कर दिया। इस लंबी अवधि में इसका काम अवश्य बदला है, लेकिन प्रेरितों के सिद्धांत के प्रति निष्ठा की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग में 2 भाग हैं, धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग और अनुशासनात्मक विभाग। धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग विश्वास एवं नैतिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बचाने से जुड़े मामलों को देखता है। विवाह कार्यालय, जो कानून और असलियत दोनों तरह से विश्वास के खास अधिकार से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है, इसी विभाग का हिस्सा है। अनुशासनात्मक विभाग उन मामलों से निपटता है जो विभाग के लिए आरक्षित है और सुप्रीम प्रेरितिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के जरिए विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। विभाग के अंदर ही परमधम पीठ बाइबल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्र कमीशन बनाए गए हैं। हर एक अपने नियमों के हिसाब से काम करता है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अंदर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आयोग का निर्माण किया गया है। इसका काम पोप को सलाह एवं परामर्श देना है, साथ ही नाबालिगों एवं कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सही पहल का सुझाव भी देना है। यह आयोग खासकर दिशा निर्देश के जरिए सही रणनीतियां एवं तरीके बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नाबालिगों एवं कमजोर लोगों को यौन शोषण से बचाया जा सके और पुरोहितों तथा धर्म संघियों के संस्थानों एवं प्रेरितिक जीवन की सोसाइटी के सदस्यों के ऐसे व्यवहार का सही जवाब दिया जा सके। विश्वास को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने की सेवा हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जब कलीसिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। आज की कोशिशें उन कोशिशों में शामिल हो जाती हैं जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत को देखा है, जिससे सही धर्म सिद्धांत के लिए चिंता कहा जाता था, जो संत ऑफिसियो से पहले की बात है, जब विभाग का मुख्यालय है यह पहले से ही नए व्यवस्थान में मौजूद थी। कई काउंसिल एवं सिनेट इसके गवाह हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग विश्वास के खजाने की रक्षा करने की परंपरा को अपनाते हुए अपने मिशन को जारी रखी है एवं आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग की संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका टाइम पास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल पाना कठिन हो जाता है। विशेषकर नौकरी कर रही महिलाएं अपने लिए समय निकाल नहीं पाती हैं, जिससे कि अपना मन पसंद काम कर सके। पर गृहिणी महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर चूल्हा चौका से फुर्सत पाकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल लेती हैं। कुछ महिलाएं टीवी के सामने बैठकर सीरियल वगैरह देखती हैं या मोबाइल देखकर अपना टाइम पास करती हैं। कुछ महिलाएं अपने खाली समय का अधिकतम उपयोग उत्पादक गतिविधियों जैसे पढ़ना लिखना, कोई भाषा सीखना, कोई शौक पूरा करना, व्यायाम करना, कोई खेल खेलना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में करती हैं। पर कुछ अपने मोहल्ले से पार होने वाले फेरी वाले, चाहे वे सब्जी बेचने वाले हों या सलवार सूट साड़ियां बेचने वाले हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम पास करती हैं, पर ये सोच नहीं पाती हैं कि वे इन बेचारों का वक्त जाया कर रही हैं। उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। आशा है आज की नाटिका ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना लाए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका टाइम पास।
1: अरे रीबा, आओ आओ ना यहाँ।
2: और क्या हो रहा है?
1: बस खाना बनाने की तैयारी है, और क्या, तुम्हारा काम हो गया?
2: हाँ, मैं तो सुबह नाश्ते के बाद ही एकदम से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
1: और भाई साहब का लंच?
2: वो तो मैं सुबह सबसे पहले वही तैयार करती हूँ।
1: एक तो ये आग बरसाती गर्मी और ऊपर से गैस के चूल्हे के पास खड़े रहना, बाप रे हालत ही खराब हो जाती है।
2: तो क्या शिखा, तुम पूरे दिन गैस के चूल्हे के पास ही खड़ी रहती हो?
1: नहीं भाई, सारा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ दिन में कुछ घंटे तो वहाँ निकल ही जाते हैं।
2: अब स्त्री होने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, सो वो हम चुका ही रहे हैं, और क्या।
1: और ऐसे में पता है, जब संजीव ऑफिस चले जाते हैं तब काम के बाद टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है।
2: अरे शिखा, तब थोड़ा दिन में आराम ही कर लिया करो।
1: अरे मैं तो बहुत चाहती हूँ कि दिन में सो जाया करूँ, तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लेकिन संजीव दिन में सोने के लिए मना करते हैं।
2: क्यों?
1: उनका कहना है कि दिन में सोने से दो नुकसान होते हैं।
2: अच्छा, कौन कौन से?
1: एक तो यह नुकसान होता है कि फिर रात को नींद ही नहीं आती, या फिर देर से आती है। और दूसरा नुकसान यह होता है कि दिन में सोने से मोटापा चढ़ता है।
2: भाई साहब का कहना ठीक है, तो फिर तुम अपना टाइम पास करने के लिए करती क्या हो?
1: ऐसे में टीवी देखने के सिवा और कोई क्या कर सकता है?
2: क्या बात करती हो शिखा, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहने से भी क्या वजन और मोटापा नहीं बढ़ता है?
1: हाँ ये भी एक मुश्किल है, वजन और मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन कोई करे भी तो क्या करे।
2: और फिर आजकल टीवी पर भी क्या सीरियल्स आते हैं, अरे ऐसे जो बनाने वाले हैं और उसमें काम करने वाले भी ना देखे।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने रीमा।
2: और यही रवैया इन्होंने ऐतिहासिक धारावाहिकों के साथ भी कर रखा है।
1: क्या रवैया अपना रखा है?
2: अरे यही मनमानी करने वाला रवैया। अब ये धारावाहिक के निर्माता और निर्देशक ये सोचते हैं कि लोगों ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए तो वे ऐतिहासिक सीरियल्स को भी फिल्मी ढंग से बनाते हैं और दिखाते हैं, इतिहास की धज्जियां उड़ा देते हैं।
1: तुमने सही कहा रीमा, इतिहास में जो न हुआ है उसे भी ये फिल्माकर दिखा देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि बात कमाई की जो है।
1: लेकिन ये धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक यह भी तो सोचते होंगे कि आजकल कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में जानती क्या है, इसलिए जैसा चाहो वैसा इतिहास दिखा दो।
2: लेकिन जो इतिहास जानते हैं और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते।
1: और रीमा, मजेदार बात तो ये है कि आज की यह कंप्यूटर वाली पीढ़ी ऐतिहासिक धारावाहिकों में भी रुचि नहीं लेती।
2: ये तो सही बात है। अच्छा शिखा, मैं चलती हूँ।
1: अरे बैठो भी रीमा, तुम्हारा घर कौन सा दूर है, दो घर छोड़कर ही तो तुम्हें अपने घर जाना है, और क्या।
2: और क्या क्या क्या मतलब?
1: मतलब ये कि कितना अच्छा टाइम पास हो रहा था तुम्हारे साथ।
2: अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या टाइम पास मूंगफली लगती हूँ? तुम्हें भले ही कोई काम ना हो मगर मुझे तो काम रहते हैं।
1: फिर काम छोड़कर क्यों आती हूँ?
2: थोड़ा सा इंटरवल करने के लिए।
1: तो फिर आप कब आओगी?
2: जब इंटरवल यानी कि मध्यांतर की जरूरत होगी।
1: वाह भाई रीमा, तुम तो मेरी भी गुरु निकली।
2: अच्छा चलती हूँ।
1: आओ रीमा, आज फिर इंटरवल किया क्या तुमने?
2: अरे नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर मेडिकल शॉप तक जा रही थी। जरा
1: क्यों, तबीयत खराब है क्या?
2: अरे नहीं, कोहनी के पास जरा सा दर्द है तो मैंने सोचा कि कोई पेन किलर ऑइंटमेंट ही लगा लिया जाए, सो लेने जा रही हूँ।
1: तुम भी रीमा सावधानी बरतने में जरा भी देर नहीं करती।
2: वो तो करना ही पड़ता है शिखा। और आज टाइम पास करने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी?
1: टाइम पास की व्यवस्था अभी अभी चली गई।
2: क्या मतलब?
1: सब्जी वाली थी, उसी से टाइम पास कर रही थी। अभी अभी तो गई है बिक्री का रोना रोकर।
2: सच तो है शिखा, अगर सब्जी बेचेगी नहीं तो खाएगी क्या?
1: सब्जी खाएगी और क्या।
3: सलवार सूट और साड़ियाँ दिखाऊं दीदी?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है।
3: आप देख तो लो दीदी।
1: हाँ हाँ दिखाओ भैया।
2: अरे मगर शिखा, तुम क्यों जबरन ही?
1: अरे देखने में क्या बुराई है, क्यों भैया?
3: हाँ दीदी, देखने से ही आपको चीज का पता चलेगा ना।
1: सुना तुमने,
3: अगर जमे तो लेना, वरना हमें तो आगे बढ़ना ही है। हाँ ये देखिए, ये सलवार सूट है और ये साड़ियाँ हैं।
1: ये सलवार सूट खोलकर दिखाना।
3: ये वाला देखिए, बहुत बढ़िया कलर है, फिरोजी, आप पर खूब जमेगा दीदी।
2: कितने का है?
3: वैसे तो मैं 450 का बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 400 में दे दूंगा।
1: हमारे लिए 400 क्यों?
3: अब आप भाव करेंगी, इसके लिए मैंने आपको पहले ही इसकी सही और एक ही भाव बता दिया है। बाजार में यही आपको 500 से कम में नहीं मिलेगा।
2: तो भैया फिर तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो?
3: अब दुकान वाले अपनी दुकान और नौकर आदि का खर्च जोड़कर बेचते हैं, और हम सिर्फ वाजिब कीमत पर ही बेचते हैं। हमारा भी फायदा और हमारे ग्राहक का भी फायदा। बोलिए दीदी, कौन सा दिखाऊं, क्या निकाल दूं?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है, तुम जाओ।
1: अरे मगर देखने तो दो।
3: ठीक है दीदी, आपकी मर्जी।
1: साड़ियाँ तो देख लेने दो रीमा।
2: नहीं भैया, न ये लेगी न मैं, तुम कहीं और बेचो।
3: ठीक है दीदी।
1: तुम भी एक ही हो रीमा, मैं मानती हूँ कि तुम्हें ये पता है कि मैं फेरी वालों से कुछ नहीं खरीदती, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि मैं उसके सूट और साड़ियाँ देखकर अपना टाइम पास कर रही थी और तुमने उसे भगा दिया।
2: मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। तुम क्या समझती हो शिखा, यह फेरी वाला सुबह सुबह अपना सारा सामान लेकर क्या तुम्हारा या तुम जैसों का टाइम पास करने के लिए निकला है? कमाने नहीं शिखा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय उसकी मजबूरी को समझा करो। अगर तुम उससे कुछ खरीद नहीं सकती हो तो तुम्हें उसका कीमती समय खराब करने का भी हक नहीं है।
1: शायद तुम ठीक कहती हो रीमा।
2: मैं शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। तुम उससे अपना टाइम पास करने की बजाय यह तो सोच लेती कि ऐसा करके तुम उसको अपनी कमाई करने से रोक रही हो। जैसे तुम फालतू हो, क्या सब भी वैसे ही है?
1: अब मुझे अफसोस है रीमा कि मैं दूसरों के समय की कीमत नहीं समझ पा रही थी।
2: देखो शिखा, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी का कीमती समय बर्बाद करें। यदि कोई तुम्हारा समय खराब करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: तो ऐसा ही दूसरों के लिए भी सोचा करो। दूसरों के साथ वह कभी ना किया करो जो तुम दूसरों के द्वारा अपने लिए भी करना पसंद नहीं करती हो।
1: मैं तुमसे वादा करती हूँ रीमा, मैं आज से अभी से अपनी ये स्वार्थी और गंदी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। दूसरों के समय को भी कीमती समझकर उसको महत्व दिया करूंगी।
2: गुड शिखा, तभी तो तुम मानव और मानवता को आदर दे पाओगी।
1: हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो।
0: टाइम पास, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, माइकल होजेस और नलिनी गहलोत। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: भार्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना।

0: प्रार्थना कर,
1: अति निर्मल माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति शुद्ध माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: कुंवारी माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: निष्कलंक माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: प्रिय माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: प्रशंसनीय माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: सुसमति की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: सृष्टिकर्ता की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: मुक्तिदाता की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति चौकस कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आदरणीय कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्तुति योग्य कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शक्तिमती कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दयालु कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्मनिष्ठ कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: हमारे आनंद का मूल
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: पवित्र आत्मा का मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आदरणीय पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: भक्ति का उत्तम पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आध्यात्मिक गुलाब
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दाऊद का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: हस्तिदंत का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ण मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: संधि की मंजूषा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: भोर का तारा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: रोगियों का स्वास्थ्य
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: पापियों की शरण
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दुखियों का दिलासा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: ख्रिस्तियों की सहायता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्गदूतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्म पुरखों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: नवियों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: प्रेरितों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शहीदों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्मवीरों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: संतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति पवित्र माला की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शांति की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।

0: तुम्हारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने ख्रिस्तियों से कहा है कि वे अपनी प्रेरिताई को ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत मुलाकात एवं चिंतन पर आधारित करें और उनके साथ गहरे संबंध द्वारा शक्ति प्राप्त कर आशा, प्रेम एवं लगन के साथ हर परिस्थिति में सुसमाचार का साक्ष्य दें। पोप लियो 14वें ने रविवार 22 जून को वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
0: आज की धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में यीशु शिष्यों को मिशन में भेजते हैं, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें यह सलाह देते हैं।
1: Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce.
0: मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। पोप ने कहा,
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio,
0: या उन बातों के बीच एक समानता दिखाता है जो हम कान से सुनते हैं, यानी हमारे दिल के राज में क्या है और जिन्हें हम सबको बताने के लिए बुलाए गए हैं।
1: Ricordandoci che l'annuncio del Vangelo,
0: और हमें याद दिलाता है कि सुसमाचार की घोषणा के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है प्रभु से एक व्यक्तिगत मुलाकात करना, जो हम में से हर एक के लिए जरूरी है। असल में प्रेरिताई के कार्य के लिए शक्ति सिर्फ तकनीकी एवं उपकरणों से बढ़कर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कार्य और हमारे जवाब की सच्चाई पर आधारित है। संत थॉमस एक्विनस प्रवचन को दूसरों तक वैसे ही पहुंचाने की सलाह देते हैं जैसे हमने चिंतन किया है। अतः संत पापा ने सभी ख्रिस्तों को चिंतन करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना एक खास अनुभव है जो कुछ संतों या मठवासियों और साधुओं के लिए ही है। हम सभी इसे कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन की भाग दौड़ के बीच शांत पल बचाने की कोशिश करते हुए, जिसमें हम ईश्वर के सामने मौन रह सकें, उनकी आवाज सुन सकें, अपनी खुशियां एवं परेशानियां उनसे साझा कर सकें और उनके साथ अपने जीवन का अवलोकन कर सकें, यह हमें और अधिक मजबूत एवं जागरूक विश्वास वाला व्यक्ति बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भरोसेमंद एवं स्वतंत्र पुरुष और महिला प्रेरित बनते हैं, जो जीवन के हर माहौल और परिस्थिति में सुसमाचार की रोशनी दिखा सकें और जहां इसकी कीमत समझी या मानी नहीं जाती, वहां भी इसकी गवाही दे सकें। सुसमाचार लेखक संत मत्ती जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उन समुदायों के लिए समय आसान नहीं था। उन्हें दुश्मनी और जुल्म का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज की दुनिया के कई हिस्सों में अनेक ख्रिस्त झेलते हैं। उनके लिए निराश होने और थकान या डर के आगे झुकने का प्रलोभन बहुत अधिक है। संत पापा ने कहा, अब पहले की तरह यीशु की शिक्षाओं पर वफादार रहना और उनके वचन का प्रचार करना मुश्किल है। नफरत का जवाब प्यार से देना, घमंड का जवाब विनम्रता से और निराशा का जवाब हिम्मत से देना, यही कारण है कि हमें अपने विश्वास और अपने मिशन को उनके साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ना चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम हार ना माने और हर किसी को हर हालत में उम्मीद, प्यार और शांति का संदेश दे सकें, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। अतः संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: कुंवारी मरियम हमें हरेक की बुलाहट के अनुसार प्रभु यीशु के मिशनरी शिष्य होने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पाप ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने विश्व शरणार्थ दिवस की याद कर कहा,
1: Ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato.
0: कल विश्व शरणार्थ दिवस मनाया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ावा दिया है। इस दिवस को शरणार्थियों की स्थिति से जुड़े सम्मेलन की 75वीं सालगिरह पर मनाया गया जिससे उन लोगों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें प्रताड़ित किया और अपना देश घर और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। पोप ने कहा,
1: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale
0: मुझे उम्मीद है कि जिस भावना ने इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बनाने की प्रेरणा दी वह आज भी देश के नेताओं की अंतरात्मा को रोशन करती रहे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सुरक्षा एवं बचाव चाहते हैं, उनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।
1: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
0: मैं सभी से यह भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जुल्म के शिकार हैं, उनका स्वागत किया जाए ताकि वे शांति और सम्मान से रह सकें और भविष्य की ओर उम्मीद से देख सकें। उसके बाद संत पापा ने कार्तिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
0: मैं कैथोलिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करते हुए विश्वास करती है और प्रार्थना के नियम विश्वास के नियम के सिद्धांत पर एक साथ चिंतन करना आजकल खास रूप से जरूरी है। तत्पश्चात पोप ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: मैं आप सभी रोम के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का स्नेह से अभिवादन करता हूँ। और अंत में संत पापा ने दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 22 जून को रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के कार्यकारी बोर्ड को संबोधित किया। संत पापा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सालाना मीटिंग में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु मिसेस सिंडी मिकेन को धन्यवाद दिया। साथ ही एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कार्ल स्काउ और इस जरूरी मीटिंग के अध्यक्ष मिसेस कार्ला बारोसो, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और इस मीटिंग में आए खास मेहमानों और संस्था के स्टाफ को अभिवादन किया, जो आपातकाल में जान बचाने और लड़ाई झगड़ों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच खाने की मदद देने के लिए समर्पित हैं। संत पापा ने कहा, आज संकट अलग अलग घटनाओं से बढ़कर लगातार बनी रहने वाली सच्चाई बन गई है, जिनकी पहचान लंबे समय तक चलने वाले झगड़े, खाने की लगातार कमी, आर्थिक उतार चढ़ाव और बढ़ते जलवायु की कमजोरियों से होती है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, ग्लोबल सिस्टम का कौन सा ढांचा ऐसी स्थितियों को पैदा करने, दोबारा पैदा करने और कभी कभी इसे नॉर्मल बनाने में काबिल है। अब बात सिर्फ दखल देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने तक फैली हुई है कि सिस्टम लगातार वही समस्याएं क्यों पैदा करता है जिन्हें ठीक करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बिखरता जा रहा है, जिसका एक कारण बहुपक्षीय व्यवस्था का संकट है। जैसा कि उन्होंने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया, सभी लोगों के लिए एक सामान्य भविष्य और सामान्य भलाई को कंसेप्ट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए संस्थान कमजोर होते दिख रहे हैं। नतीजन देशों ने इन मुद्दों और मल्टीलेटरल सहयोग के बीच गहरे लिंक को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिसोर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और घरेलू स्थिरता पर तेजी से लगाया है। संत पापा ने कहा कि जो दांव पर लगा है वह न सिर्फ किसी एजेंसी का असर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की विश्वसनीयता भी है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि एक नया रास्ता मुमकिन है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, इसके लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है उसे आसान बनाने और जो जरूरी है उसे प्राथमिकता देने और यह पक्का करने का इरादा होना चाहिए कि किसी भी इंसान को भुलाया ना जाए। अंत में संत पापा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों को ईश्वर आशीर्वाद दे, ताकि सभी को अपनी रोजी रोटी मिल सके और वे इज्जत से जी सकें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून के जन्म की 100वीं सालगिरह पर उनके फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की, जिसका नाम उनके नाम पर है और जो उनका काम को जारी रखे हुए हैं। अपने भाषण में संत पापा ने आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून को मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर, सबसे कमजोर लोगों के लिए समर्पित एक डॉक्टर और जीवन के बिना थके रक्षक के रूप में याद किया। उन्होंने फाउंडेशन के सदस्यों से उनके उदाहरण को अपनाने और समाज में समर्पित गवाह बनने, आम भलाई के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून, जिन्होंने ट्राइसोमी 21 के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोमल असमानता की खोज की, मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें आज के जेनेटिक्स के पिताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपना जीवन खोज और बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। संत पापा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मेडिसिन वह कहना पसंद करते थे, बीमारी से नफरत और बीमार व्यक्ति के लिए प्यार है। संत पापा ने कहा कि इसी विश्वास ने लेज्यून को उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें वे प्यार से गरीबों में से गरीब कहते थे। संत पापा ने कहा, प्रोफेसर लेज्यून की एकेडमिक उत्कृष्टता और कलीसिया के लिए बिना थके सेवा को देखते हुए संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें पोंटिफिकल अकादमी ऑफ साइंस का सदस्य नियुक्त किया था।
संत पापा ने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन की संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ गहरी दोस्ती और जीवन की रक्षा के लिए उनके साझा प्रतिबद्धता ने जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन ने अकादमी को जीवन के खिलाफ बढ़ते खतरों के सामने एक जरूरी संस्था के रूप में देखा। विज्ञान और ज्ञान के व्यक्ति के रूप में जेरोम लेजियोन को जल्द ही एहसास हो गया था कि उनकी वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल जन्म से पहले ट्राइसोमी 21 वाले लोगों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसी कारण से संत पापा ने कहा कि वह उनके वकील बनने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने हिपोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन और इस नए यूजेनिक्स की निंदा की, जिसे उन्होंने क्रोसोमल नस्लवाद कहा। प्रोफेसर लेजियोन के भविष्य बताने वाले शब्दों ने उन्हें हर इंसान की जिंदगी की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, जो उस अटूट सम्मान पर आधारित है जिसकी शुरुआत ईश्वर के क्रिएटिव काम से हुई है। उधर यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की 96वीं आम सभा 24 जून को प्राग चेकिया में शुरू होने वाली है, जिसमें 56 देशों के 113 पब्लिक रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे, जिसमें EBU के संस्थापक सदस्यों में से एक वाटिकन रेडियो भी शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में यूरोप का मीडिया परिदृश्य कैसे बदलेगा? बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता पर कैसे असर डालेंगे? संचार के लिए बढ़ते डिजिटल तरीके और क्वालिटी न्यूज को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच सही संतुलन क्या है, तथा यूरोपियन नेता और नागरिक सोच समझ कर फैसले ले सकें? ये यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की आने वाली आम सभा के कुछ खास मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक सेवा मीडिया की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इस पोंटिफिकल ब्रॉडकास्टर को संचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और EBU रेडियो और ऑडियो न्यूज ग्रुप के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोटी प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने ख्रिस्तियों से कहा है कि वे अपनी प्रेरिताई को ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत मुलाकात एवं चिंतन पर आधारित करें और उनके साथ गहरे संबंध द्वारा शक्ति प्राप्त कर आशा, प्रेम एवं लगन के साथ हर परिस्थिति में सुसमाचार का साक्ष्य दें। पोप लियो 14वें ने रविवार 22 जून को वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
0: आज के धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में येसु शिष्यों को मिशन में भेजते हैं, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें यह सलाह देते हैं।
1: Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce.
0: मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। पोप ने कहा,
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio,
0: या उन बातों के बीच एक समानता दिखाता है जो हम कान से सुनते हैं, यानी हमारे दिल के राज में क्या है और जिन्हें हम सबको बताने के लिए बुलाए गए हैं।
1: Ricordandoci che l'annuncio del Vangelo,
0: और हमें याद दिलाता है कि सुसमाचार की घोषणा के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है प्रभु से एक व्यक्तिगत मुलाकात करना, जो हम में से हर एक के लिए जरूरी है। असल में प्रेरिताई के कार्य के लिए शक्ति सिर्फ तकनीकी एवं उपकरणों से बढ़कर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कार्य और हमारे जवाब की सच्चाई पर आधारित है। संत थॉमस एक्विनस प्रवचन को दूसरों तक वैसे ही पहुंचाने की सलाह देते हैं जैसे हमने चिंतन किया है। अतः संत पापा ने सभी ख्रिस्तों को चिंतन करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना एक खास अनुभव है जो कुछ संतों या मठवासियों और साधुओं के लिए ही है। हम सभी इसे कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन की भाग दौड़ के बीच शांत पल बचाने की कोशिश करते हुए, जिसमें हम ईश्वर के सामने मौन रह सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, अपनी खुशियां एवं परेशानियां उनसे साझा कर सकें और उनके साथ अपने जीवन का अवलोकन कर सकें, यह हमें और अधिक मजबूत एवं जागरूक विश्वास वाला व्यक्ति बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भरोसेमंद एवं स्वतंत्र पुरुष और महिला प्रेरित बनते हैं, जो जीवन के हर माहौल और परिस्थिति में सुसमाचार की रोशनी दिखा सकें और जहां इसकी कीमत समझी या मानी नहीं जाती, वहां भी इसकी गवाही दे सकें। सुसमाचार लेखक संत मती जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उन समुदायों के लिए समय आसान नहीं था। उन्हें दुश्मनी और जुल्म का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज की दुनिया के कई हिस्सों में अनेक ख्रिस्त झेलते हैं। उनके लिए निराश होने और थकान या डर के आगे झुकने का प्रलोभन बहुत अधिक है। संत पापा ने कहा, अब पहले की तरह येसु की शिक्षाओं पर वफादार रहना और उनके वचन का प्रचार करना मुश्किल है। नफरत का जवाब प्यार से देना, घमंड का जवाब विनम्रता से और निराशा का जवाब हिम्मत से देना, यही कारण है कि हमें अपने विश्वास और अपने मिशन को उनके साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ना चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम हार ना माने और हर किसी को हर हालत में उम्मीद, प्यार और शांति का संदेश दे सकें, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। अतः संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: कुंवारी मरियम हमें हरेक की बुलाहट के अनुसार प्रभु येसु के मिशनरी शिष्य होने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पाप ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने विश्व शरणार्थी दिवस की याद कर कहा,
1: Ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato.
0: कल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ावा दिया है। इस दिवस को शरणार्थियों की स्थिति से जुड़े सम्मेलन की 75वीं सालगिरह पर मनाया गया जिससे उन लोगों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें प्रताड़ित किया और अपना देश घर और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। पोप ने कहा,
1: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale
0: मुझे उम्मीद है कि जिस भावना ने इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बनाने की प्रेरणा दी वह आज भी देश के नेताओं की अंतरात्मा को रोशन करती रहे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सुरक्षा एवं बचाव चाहते हैं, उनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।
1: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
0: मैं सभी से यह भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जुल्म के शिकार हैं, उनका स्वागत किया जाए ताकि वे शांति और सम्मान से रह सकें और भविष्य की ओर उम्मीद से देख सकें। उसके बाद संत पापा ने कार्तिक पेंटिकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
0: मैं कैथोलिक पेंटिकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करते हुए विश्वास करती है और प्रार्थना के नियम विश्वास के नियम के सिद्धांत पर एक साथ चिंतन करना आजकल खास रूप से जरूरी है। तत्पश्चात पोप ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: मैं आप सभी रोम के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का स्नेह से अभिवादन करता हूँ। और अंत में संत पापा ने दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 22 जून को रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के कार्यकारी बोर्ड को संबोधित किया। संत पापा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सालाना मीटिंग में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु मिसेस सिंडी मिकेन को धन्यवाद दिया। साथ ही एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कार्ल स्काउ और इस जरूरी मीटिंग के अध्यक्ष मिसेस कार्ला बारोसो, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और इस मीटिंग में आए खास मेहमानों और संस्था के स्टाफ को अभिवादन किया, जो आपातकाल में जान बचाने और लड़ाई झगड़ों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच खाने की मदद देने के लिए समर्पित हैं। संत पापा ने कहा, आज संकट अलग अलग घटनाओं से बढ़कर लगातार बनी रहने वाली सच्चाई बन गई है, जिनकी पहचान लंबे समय तक चलने वाले झगड़े, खाने की लगातार कमी, आर्थिक उतार चढ़ाव और बढ़ते जलवायु की कमजोरियों से होती है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, ग्लोबल सिस्टम का कौन सा ढांचा ऐसी स्थितियों को पैदा करने, दोबारा पैदा करने और कभी कभी इसे नॉर्मल बनाने में काबिल है। अब बात सिर्फ दखल देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने तक फैली हुई है कि सिस्टम लगातार वही समस्याएं क्यों पैदा करता है जिन्हें ठीक करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बिखरता जा रहा है, जिसका एक कारण बहुपक्षीय व्यवस्था का संकट है। जैसा कि उन्होंने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया, सभी लोगों के लिए एक सामान्य भविष्य और सामान्य भलाई को कंसेप्ट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए संस्थान कमजोर होते दिख रहे हैं। नतीजन देशों ने इन मुद्दों और मल्टीलेटरल सहयोग के बीच गहरे लिंक को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिसोर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और घरेलू स्थिरता पर तेजी से लगाया है। संत पापा ने कहा कि जो दांव पर लगा है वह न सिर्फ किसी एजेंसी का असर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की विश्वसनीयता भी है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि एक नया रास्ता मुमकिन है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, इसके लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है उसे आसान बनाने और जो जरूरी है उसे प्राथमिकता देने और यह पक्का करने का इरादा होना चाहिए कि किसी भी इंसान को भुलाया ना जाए। अंत में संत पापा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों को ईश्वर आशीर्वाद दे, ताकि सभी को अपनी रोजी रोटी मिल सके और वे इज्जत से जी सकें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून के जन्म की 100वीं सालगिरह पर उनके फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की, जिसका नाम उनके नाम पर है और जो उनका काम को जारी रखे हुए हैं। अपने भाषण में संत पापा ने आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून को मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर, सबसे कमजोर लोगों के लिए समर्पित एक डॉक्टर और जीवन के बिना थके रक्षक के रूप में याद किया। उन्होंने फाउंडेशन के सदस्यों से उनके उदाहरण को अपनाने और समाज में समर्पित गवाह बनने, आम भलाई के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून, जिन्होंने ट्राइसोमी 21 के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोमल असमानता की खोज की, मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें आज के जेनेटिक्स के पिताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपना जीवन खोज और बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। संत पापा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मेडिसिन वह कहना पसंद करते थे, बीमारी से नफरत और बीमार व्यक्ति के लिए प्यार है। संत पापा ने कहा कि इसी विश्वास ने लेज्यून को उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें वे प्यार से गरीबों में से गरीब कहते थे। संत पापा ने कहा, प्रोफेसर लेज्यून की एकेडमिक उत्कृष्टता और कलीसिया के लिए बिना थके सेवा को देखते हुए संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें पोंटिफिकल अकादमी ऑफ साइंस का सदस्य नियुक्त किया था।
संत पापा ने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन की संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ गहरी दोस्ती और जीवन की रक्षा के लिए उनके साझा प्रतिबद्धता ने जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन ने अकादमी को जीवन के खिलाफ बढ़ते खतरों के सामने एक जरूरी संस्था के रूप में देखा। विज्ञान और ज्ञान के व्यक्ति के रूप में जेरोम लेजियोन को जल्द ही एहसास हो गया था कि उनकी वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल जन्म से पहले ट्राइसोमी 21 वाले लोगों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसी कारण से संत पापा ने कहा कि वह उनके वकील बनने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने हिपोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन और इस नए यूजेनिक्स की निंदा की, जिसे उन्होंने क्रोसोमल नस्लवाद कहा। प्रोफेसर लेजियोन के भविष्य बताने वाले शब्दों ने उन्हें हर इंसान की जिंदगी की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, जो उस अटूट सम्मान पर आधारित है जिसकी शुरुआत ईश्वर के क्रिएटिव काम से हुई है। उधर यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की 96वीं आम सभा 24 जून को प्राग चेकिया में शुरू होने वाली है, जिसमें 56 देशों के 113 पब्लिक रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे, जिसमें EBU के संस्थापक सदस्यों में से एक वाटिकन रेडियो भी शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में यूरोप का मीडिया परिदृश्य कैसे बदलेगा? बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता पर कैसे असर डालेंगे? संचार के लिए बढ़ते डिजिटल तरीके और क्वालिटी न्यूज को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच सही संतुलन क्या है, तथा यूरोपियन नेता और नागरिक सोच समझ कर फैसले ले सकें? ये यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की आने वाली आम सभा के कुछ खास मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक सेवा मीडिया की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इस पोंटिफिकल ब्रॉडकास्टर को संचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और EBU रेडियो और ऑडियो न्यूज ग्रुप के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोटी प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।